0: You are listening to Geetanjali. Lotus FM.
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतांजलि और मैं हूं खुशी पारेख, आपकी आज की आरजे। कईयों ने मुझे गीतमाला पे सुना होगा, तो आज मैं होस्ट कर रही हूं गीतांजलि का ये शो। आशा है कि आप सबको ये शो पसंद आएगा। तो हमने सुना बहुत ही प्यारा सा भजन राधा रानी का बाय सूरज जीवन। और वीणा जी की तरह आज मैं भी एक एक्टर के बारे में बात करूंगी। सो वेलकम एवरीवन टू द शो ऑफ गीतांजलि। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज खुशी पारेख। यू मस्ट हैव हर्ड मी ऑन द शो ऑफ गीतमाला। टुडे आई वेलकम यू टू गीतांजलि एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस वंडरफुल वंडरफुल लेजेंडरी एक्टर। दिस एक्टर हैज डन फिल्म्स लाइक गाइड, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, हरे रामा हरे कृष्णा, हम दोनों, सीआईडी, काला पानी, मधुबाला, बाजी, हीरा पन्ना, प्रेम पुजारी, तीन देविया एंड मैनी मैनी मोर। ही वॉज सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर ऑफ हिज टाइम। I'm pretty sure that you already know who I'm talking about, but those people who don't know who I'm talking about, we will reveal who the actor is after this beautiful song.

0: You are listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: मैं आपका स्वागत करती हूं फिर से गीतांजलि पे. मेरा नाम है खुशी पारेख. आशा करती हूं आपको ये शो पसंद आया होगा. तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इनमें से कई सारे लोगों ने सही जवाब देना शुरू कर दिया है. लेकिन मुझे और मैसेजेस चाहिए, और जवाब चाहिए, और एंगेजमेंट चाहिए. तो अपना फोन उठाइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए लोटस FM के नंबर पर कि कौन है ये स्टार जिनके मूवीज के नाम मैंने आपको बताए. और एक और क्लू देती हूँ, ये है एवरग्रीन स्टार. इनको एवरग्रीन स्टार के नाम से भी जाना जाता है. आपका काम थोड़ा सा आसान करके ये गाना बजाते हैं जो इन्हीं स्टार का है.

0: You are listening to Geektanjali. Lotus FM.
1: Hey, apna dil to awara, na jaane kis pe aayega.
2: Oh, what a beautiful song. Like golden oldies. That's what you're going to be listening to most of the show. Like, imagine kijiye ki aap khana bana rahe hai aur ye wala gana chal raha hai. Like that jazzy beat, the rock and roll, the lindy hop. Like such beautiful beats these golden oldies had. Oh my God, like what energy. So beautiful. To, sabne, bahut saaron ne मैसेजेस किए हैं और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये एक्टर है देवानंद जी. यस, द लेजेंडरी देवानंद. देवानंद वॉज बोर्न ऑन द 1923, बोर्न एज धर्मदेव पिशोरीमल आनंद. ही वॉज अ लेजेंडरी इंडियन एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, वाइडली नोन एज द एवरग्रीन स्टार ऑफ बॉलीवुड. Spanning over 6 decades, his remarkable cinematic journey introduced path-breaking films, a signature stylish persona, and a tireless entrepreneurial spirit that endured until his final days in 2011. I don't think there's ever been anyone that, you know, that's even close enough to Devanand. He had this charisma about himself. He had this energy about himself. His looks, oh my God, he was such a handsome man. Like, you know, there's rumors. तो ऐसी अफवाहें हैं. अच्छा, एक काम करते हैं, अफवाहों को गाने के बाद मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? क्योंकि इतनी सारी बातें हैं ना देवानंद जी के लिए, मैं बोलती रह जाऊंगी और आपके गाने रह जाएंगे. सो लेट्स लिसन टू दिस वन ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गोल्डन ओल्डी. आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू गोना लव इट. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो.

जी ने क्या डिसाइड किया पता है? उन्होंने डिसाइड किया कि वो काला शर्ट और काला पैंट नहीं पहनेंगे ताकि वो इतने हैंडसम ना लगे कि लोग मरने लगे. इमेजिन ही हैड टू टेक दैट स्टेप. ही नेवर वोर ब्लैक इन पब्लिक अगेन आफ्टर दैट डे. व्हाट करिश्मा.

0: You are listening to Geektanjali. Lotus FM.
1: Welcome back to Geektanjali. You are listening to Geektanjali with your RJ Khushi Parekh. तो मैं आपका स्वागत करती हूँ गीतांजलि में वापस से. और जी हाँ, चर्चे तो प्यार के बहुत से शुरू हो गए थे देवानंद जी के. तो द देव सूर्या रोमांस, नॉट टू शो इफ यू ऑल हैव हर्ड ऑफ दिस, बट Indian film industry has seen number of beautiful on-screen pairs who light up the screen with their presence and chemistry. One such pair was Devanand and his alleged love interest Suraya. According to reports in the media, Devanand and Suraya's romance blossomed on the sets of the film Vidya. The famous on-screen pair fell in love while shooting for the film Vidya. In fact, during the shooting of the song Kinare Kinare Chale Jayenge on a boat, the boat overturned and in a true Bollywood hero style, Devanand Saab rescued Suraya and then he wanted to marry her. He also proposed to Suraya on the sets of the film Jeet with a diamond ring worth 3,000 rupees, but Suraya's maternal grandmother was strongly opposed to the inter-religious romance. Suraya remained unmarried all her life. What a beautiful, beautiful love story. Like, मतलब कि वो दोनों बोट में जा रहे थे. अच्छा, पहले से शुरू करते हुए, फिल्म पे मिले, फिल्म सेट पे काम करते करते प्यार हो गया. फिर काम करते करते, एक गाना शूट करते करते, बोट में बोट अचानक से ओवरटर्न हो जाती है और देवानंद जी एकदम ट्रू बॉलीवुड हीरो की तरह सूर्या जी को बचा लेते हैं. तो मतलब कि और प्यार हो गया. फिर उन्होंने ठान ली कि शादी करूंगा तो बस इसी से करूंगा. उन्होंने प्रपोज किया और वो भी क्या स्टाइल में, 3,000 की अंगूठी. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट 3,000 रूपीज मेंट बैक देन? इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट. सो लेकिन हर लव स्टोरी में एक विलन तो होता है. तो इसमें विलन थी सूर्या जी की नानी, मटर्नल ग्रैंड मदर. हर नानी वॉज द विलन इन दिस. शी डिड नॉट वॉन्ट द इंटर रिलीजियस रोमांस बिटवीन सूर्या एंड देवानंद जी. लेकिन इस प्यार की खूबसूरती देखिए. सूर्या जी को देवानंद जी से इतना ज्यादा प्यार था कि उन्होंने पूरी उम्र शादी तक नहीं की. How strong that love, that bond has to be, that you just cannot think of marrying anyone else, that you just, you know, you love this person and that's it. Whether you can be with them, you can't be with them, that's it. Nothing else matters to you. Such a beautiful, beautiful love story.

होता। ऐसा ही तो सोचा था देवानंद जी ने कि कोई हम सफर तो चाहिए। सुरैया जी ने भले शादी ना की हो, लेकिन देवानंद जी ने तो शादी की थी। बॉलीवुड आइकन देवानंद, मैरिड एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक। इन 1954, इन अ हाईली प्राइवेट सीक्रेट सेरेमनी ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक वाइल शूटिंग द फिल्म टैक्सी ड्राइवर, द इंटरफेथ कपल हैड टू चिल्ड्रन, सुनील एंड देवीना, एंड रिमेन टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। We have a technical announcement over here. The Syntec will be conducting maintenance on their site that is mentioned below. As a result, there will be interruptions on services during the maintenance period. The affected sites are Dispatch, Querido, Suburg, and Andries Kraal, Paul Sewer Dam, Grahamstown, and Hankey. This will take place on the 8th June 2026. Complete shutdown from 6 to 8 p.m. तो हम आ गए हैं अपने शो के एंड में, लेकिन जाने से पहले हम एक खूबसूरत गाना प्ले करेंगे जो मेरा तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। मतलब कि इतना ब्यूटीफुल गाना कोई कैसे लिख सकता है, कैसे बना सकता है, कितना ब्यूटीफुल गाना है। लेकिन उससे पहले हम एक और गाना प्ले करेंगे, फिर वापस से आएंगे, और वो एंड में ब्यूटीफुल जो गाना है ना, मतलब कि हो ही नहीं सकता कि किसी को पसंद ना आए, इतना ब्यूटीफुल गाना है। तो एंजॉय करिए ये एक गाना उससे पहले।

0: You are listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays, 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: I welcome you back to Geetanjali, your RJ Khushi Parekh. I'm getting such beautiful messages from you all that you all are enjoying the show, you are loving the presentation, you all, you know, it's so beautiful to see that you all still enjoy the golden oldies. I am so happy that you are happy. Some really, really beautiful voice notes, some really, really beautiful messages. This is just great vibe and energy. So, hum aa chuke hain ant mein, hamara show abhi हम एंड करेंगे. अंत हमेशा सैड होता है, लेकिन अंत के बाद आरंभ होता है और आरंभ के बाद अंत होता है. ये तो मतलब कि जीवन है. लेकिन मुझे बहुत बहुत मज़ा आया आप सबके साथ और आशा करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे और फिर से इतनी ही ज़्यादा मस्ती करेंगे, इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स शेयर करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत बहुत मज़ा आया होगा इन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को सुन के और देवानंद जी के बारे में जान के और मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके. सो I wish you all the best, whoever's driving, drive safe back home, and whoever's at home, have a great evening. Main sign off karti hoon, Khushi Parekh, aapki RJ, aasha karti hoon, phir se milna hoga, aur enjoy kijiye ye beautiful, beautiful song. Khoya khoya chand.
2: मैं आपको इतना अच्छा आदमी नहीं समझती थी.
3: इसी बात पर जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे. घूमने चलिएगा.
2: नींद
3: नींद

मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।